সর দুটো লাগে ডুবে সেভেন।

ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਈਆਂ ਤੱਤ।

ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ

पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब आते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ,

0: नानक तग न टुटई जे तग होवे जो महला पहला।
1: नाय मने पत उपजै सलाही सच सूत।

0: ज्ञान करे तुइ महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेहवा सुत कूड़, अखी सुत वेखना पर त्रै पर धन रूप, कन्नी सुत कन पै लाए तबारी खा।

ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰੀ

वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

कर्म नाम वर्णत सुमत सत जुग तै माण्यो छलियो बलवावन पायो त्रेत तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उगर सैन को राज अपह भगत है जन दियो काल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फुरमायो इच्छा पूरख सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिना सो ऐसा हर त्याइये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हालत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी बड़ भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना दर्शन प्यासी दिन सुरात

सो कहो टल गुर सेविए एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी मोर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सहांदे जिस पा

जिस पास बैठियां सोहिए सवना दाविसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी

पूज अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ भावे सरवर मह हंस प्राण पत पावे गौर।

जाए। कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ राख राख चरण धरे विचारी। दुविधा छोड़ भय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे। आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंस छोड़ न जाए। प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस हंस मह सागर। अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी वैसे। नार न पुरख कहो को कैसे, तेर पवन जोत रहे लिव लाई। सुर नर नाथ सच्चे शरणाई, आनंद मूल अनाथ अधारी। गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत बछल पै काटन हारे। हमे मार मिले भगतारे, अनक जतन कर काल संताए। मरण लिखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे। आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कह तो पढ़ तो सुन तो एक। धीरज धर्म धरणी धर टेक, जात सत संजम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे। गुर के शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप। नानक जाचे साच स्वरूप, साचे निर्मल मैल ना लागे। गुर के शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप।

दीननाथ माया करू।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Mm-hmm.

रंग परंग नेक ना जपन करत बा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला तेरा।

ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Altyazı M.K.

ਬਟੇ ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ ਕਰਦਮੰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ।

बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार।

दिवस रात दुदाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया

Wiertel?

धन धन श्री गुरु रामदास जियो महाराज।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

ਸੋਦਰਾ ਗਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

आय तेरा अंत न पारा वर्या। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ बो सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सर्वरड़ पई ले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया पांक जो मुह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेत समूढ़ मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्राणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवन, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लेहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कांता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विषन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जीरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोस्त जीते उठवाती उत्पाता, सकल मलेश करो राण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई।
एक वार जन तुम्हें संभार, काल फांसते ताहे उवार।

खवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बेसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ ते

0: जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लाइन ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जैस डिठा सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध्या बताए। सब थाई हो

ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਮ ਵਾਫ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ।

चोर जार जुआर हों पार कर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देस ठगंदा। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा। विश्वास घाती अकिरत कान मैं को न रखंदा। सिमर मुरीदां ढाडियां सतगुर बखसंदा। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए। ओहो अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए। बाणी गुरु गुरु है सब मह रहया समाए।

रासना रामत सुनत सुख श्रवना चेत चेते सुख होई कह पीखन दोय नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रामत सुनत सुख श्रवना

0: तोखे जह देखा तह सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तनासरी महला पहला आरती, एको अंकार सतगुर प्रसाद।

ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ।

ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਨਹਿ ਚਲ ਚੋਰ ਛੱਤ।

Thank you.

Thank you.

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखहो सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखहो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहां दा साह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वे साह। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहां जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया, अनेक जतन कार हृदय रखिया, रतन न छपै छपाया, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया, अनेक जतन कार हृदय रखिया, रतन न छपै छपाया।

रहाउ रसना रमत सुनत सुख श्रवण चित चित सुख होई कहो पीखन द्वे नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवण चित चित सुख होई कहो पीखन द्वे नैन संतोखे जह देखा तह सोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश स्वर है सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे सरण नानक पुरख अचुत है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई चाओ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई सोहेला राग गौड़ी दीप के महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का होए विचारो तित कर गावहो सोहेला सिवरहो सिर जनहारो तुम गावहो मेरे निरभउ का सोहेला हौ वारे जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभाली ना देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मेल कर पाव हो तेल देहो सजण असी सड़िया जे होवै साहिब स्यो मेल कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छेओ कर छेओ गोर छे उपदेश गोर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसया घड़िया पहरा थित्ती वारी माह हुआ सूरज एको रुते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीप कवने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पाद बेमल नान एक पाद गंध वेन सहस तव गंध एव चलत मोही
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤੇ ਸੁਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ,

रहाओ। साकत हर रस साधना जानया, तिन अंतर हौ मैं कंडाहे। ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावै, जमकाल सहे सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हाम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाहे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनहो मेरे मीता। संत टहल की बेला, कीहा खाट चलहो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, औद घटै दिनस रैणारे। मान गुरमिल काज सवारे रहाओ। इहो संसार बिकार संसे मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसहे जगाए पियावै इहो रास, अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई बिहाजहु, हार गुर ते मनहे बसेरा। निज घर महल पाव हो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामे पुरख बिदाते, श्रद्धा मान के पूरे।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Ben de bakalım.

टोई एक हर दोस पोट कीरत की गुर राम दास रखो शरनो बबीहा अमृत भेले बोलिया बबीहा अमृत भेले।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा देव।

0: लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िया जेते बरस परस पड़िया जेते मास पड़िया जेते आर जा पड़िया जेते सास नानक लिखा एक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तित कड़िया बो तीर्थ पव्या तित लव्या बहु पीख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया।

महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा।

लिखीचा दोस्ती सब जग चलन हार, कुड़ मिठा कुड़ माख्यो कुड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती

करे विचार। अंधी रयत ज्ञान में होनी पाए प्रेम रदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार। ऊंचे कुके

पद पायो गुर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रित शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़।

जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो बड़ भागी लिव लागी मैदन पर सहता। पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बक्ता। कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता। ध्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण। शब्द सार हर साम्यदार अहमेव निवारण। महादान सत गुर ज्ञान मन चाओ न हुटा। सतवंत हर नाम मंत्र नव निज नानी खुटा। गुरु रामदास तन सर्व मैं।

0: के कल सिपायो गुर अर्जुन का लुचर तें जन के कल सिपायो।
1: सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चल नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारे हो बब जल सायर सेत नाम हरि का बहुता तो सतगुर सिंह हेत नाम लाग जग उदरे हो जगत उदार नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम वार अंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक हायो ताते अंगद पयो तत् स्यो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत शत्र गुर राम बेंदियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन।
2: सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उर आदि पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक तोर प्रकट ज्योत जगमग तेज पो मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मोर सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कल चुक जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लक बेहतरो ते जन जाचो जगतर पर जानियत बस रहन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंग्यो बास माते बाहर पैर देखियत ताम स्यो अपर परम पर परक स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भक्त के हेत पाए रहियो मिल राम स्यो।
3: अंत न पावत देव सभै मुन इंद्र महाशिव जोग करी।

जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मथ चुखे रे।

0: निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग लिलारो दे, तब लो परमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र मैं बूढ़ थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जहे मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
2: कल समुद्र भय रूप, प्रगट हरे नाम उदाहरण। बसै संत जिस हृदय, दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर ना कोई। मन बच जिन जान्यो, भयो ते समसर सोई। धरन गगन नव खंड मै, जोत सब रूपी रहो पर। भन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जुन पर तख हर। अजह गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै। नित पुराण बचिए, वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर ढुले, नाम अमृत मुख लिहियो। गुर अर्जुन सिर सतर, आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो। हरबंस जगत जस संचरियो, सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
3: देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो, श्री गुर तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव, तोहे जस जय जय जंपै। असुर गीत भाग, पापिन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के, गुर राम दा जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमे, गुर अर्जन को दे आयो। काटे सो पाप तिन नरों के, गुर राम दा जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमे, गुर अर्जन को दे आयो।
4: श्री गुरु साहिब सब ऊपर, करी कृपा सतजुग जिन त्रूपर। श्री प्रहलाद भगत उद्धरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी धारो, मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुरबिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ, गुरबिन मुक्त न होए। गुर नानक निकट बसै बनवारी, तिन लहणा थाप जोत जग धारी। लहणे पंथ धर्म का किया, अमरदास भले को दिया। तिन श्री राम दास सोढ़ी थिर थप्यो, हर का नाम अखै निध अप्यो। अप्यो हर नाम अखै निध चौह जुग, गुर सेवा कर फल लहियं। बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं। परतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण परणं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरणं।
5: तू सतगुर चौह जुगी, आ

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिनयागर गहर गंभीर यथायत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मरा

दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जगत उधारन नाम सतगुर।

सुत दारा से प्रीत ले एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम

0: राखो सरनाई।
1: सो कहौ टल गुर सेविऐ अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसिऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवे सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पात साह माल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वडहंस महला तीजा।

मन तृप्तिया हर नाम त्याई, रसना हर साद लगी सहज सुभाई। मन तृप्तिया हर नाम त्याई, सदा सुख साचे शब्द विचारी, अपने सतगुर विटहौ सदा बलहारी, रहाओ अखी संतोखिया एक लेवला।

ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਸਬਦ ਹਰਿ ਨਾਮੁ।